0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. परे कलह में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली.